सबसे अच्छी बीवी, दुनिया में सबसे अच्छी बीवियां जो हैं वो है उम्महातुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात, ये दुनिया की सबसे अच्छी बीवियां हैं। उनको इतना शर्फ काफी है कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपने प्यारे पैगंबर सल्लम की बीवी बना दी है, उम्महातुल मुमिनीन। और यह भी शर्फ है उनके लिए कि वो मोमिनों की माएँ हैं। और जो लोग उम्महात मोमिनों का अपनी माँ तसव्वुर नहीं करता वो मोमिन ही नहीं है। यानी बुरा भला कहना दूर की बात है, गाली देना दूर की बात है, नऊज़ु बिल्लाह ज़िना की तोहमत लगाना तो दूर की बात है। जो अपनी माँ तस्लीम नहीं करता वो मोमिन ही नहीं है। क्योंकि कुरान मजीद में है अल्लाह ताला ने मोमिनों के साथ उनकी माओं को जोड़ दिया है, वो अज़वाज उम्महात, आप सल्लम की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जो आप सल्लम की बीवियों का किरदार रहा है सीरत, जब हम सीरत को पढ़ते हैं और देखते हैं, वल्लाहे अकल हैरान हो जाती है। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी इन अजीम औरतों ने एक मिसाल कायम की है, तारीख इसकी गवाह है कि ऐसे अजीम औरतें इस जमीन पर दोबारा कदम नहीं रखेंगी, इनसे बेहतर कोई हो नहीं सकता। उम्महातुन रज़ियल्लाहु अज्मईन। और यह शर्फ काफी है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया जाता है महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मन अहब्बुन नास इलैक या रसूलुल्लाह, सबसे ज्यादा महबूब और पसंद कौन है तुम्हें ए अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आयशा, सैयद आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब है और सबसे ज्यादा पसंदीदा है। कितनी बड़ा शर्फ है। सैयद मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा महबूब उनकी बीवी है सैयद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा।

घेर देते हैं आपको, और बच्चे को जमीन पे नहीं बिठाते, अपने कंधों पर बिठा देते हैं। टांग लगा अपने कंधों पर बिठा देते, बच्चे ने सर को पकड़ा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का आगाज करते हैं तकबीरत अहलम से, नमाज पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा अभी रुकू आएगा, फिर सजदा आएगा, तब तो बिठाएंगे ना। रुकू किया, बच्चे को सीने से लगाया, सजदा किया, बच्चे को जमीन पे बिठा दिया। जब फिर उठ के खड़े हो दूसरी रकत के लिए, बच्चे को फिर उठा लिया। आप तसव्वुर कर सकते हैं, रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी नरमी। फर्ज नमाज में औलियाओं के सरदार मुक्तदी हैं, रहमतुल आलमीन इमामत कर रहे हैं, वो नमाज में हरकत, बच्चे को उठाना, फिर जमीन पे बिठाना, फिर उठाना, एक पैगाम देना चाहते थे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या पैगाम है कोई जानता है? बड़ा वाज़ह पैगाम है जी। नहीं, लोग तो ऐसा कर सकते हैं, तो एक पैगाम यह है कि नमाज में जरूरत की हरकत करना जायज है, वो अलग बात है, लेकिन एक बहुत बड़ा पैगाम है, दिलों को ऐसे हिलाना चाहते हैं प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शफकत तो है, लेकिन एक और चीज है, बड़ी चीज। बच्चों के साथ क्या सुलूक करते थे जाहिलियत में अरब? जिंदा गाड़ देते थे कि नहीं? बाज़ लोग ये समझते हैं आज के दौर में भी कि औरत की कोई कदर नहीं दीन इस्लाम में, औरत सिर्फ बुरके में जिंदगी गुजारेगी और उस कालक में उसकी मौत होगी, नऊज़ु बिल्लाह। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पैगाम दे रहे हैं उस जमाने के लोगों को और क़यामत तक हर उस शख्स को जो अपनी उंगली खड़ी करते इस तरीके से शरीयत के ऊपर, दीन इस्लाम के ऊपर, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, कि अपनी आंखों से देख लो कि दीन इस्लाम नरमी का दीन है और बच्चियों की और औरतों की यह कदर है शरीयत में, कि फर्ज नमाज में भी प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कंधों पर बिठा देते हैं। ये वही बच्ची थी जो कई साल पहले अरब जमीन में जिंदा गाड़ देते थे, आज वही बच्ची है जो इमाम उल अंबिया के कंधों पर बैठी है और नमाज की अदायगी हो रही है, फर्ज नमाज की अदायगी। दिलों को हिलाकर रख दिया प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारे मुआशरे में किसी घर में बच्ची पैदा हो जाए तो रो रो के पागल हो जाते हैं, फिर बेटी पैदा हो गई, फिर बेटी पैदा हो गई, तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें क्या पता कि इस रहमत से अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत दे दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसको अल्लाह ताला ने 3 बेटियां अता फरमाई हैं और उसने उनके बेहतरीन तरीके से परवरिश की है, तरबियत की है, तो इन 3 बेटों की वजह से वो जन्नत में जाएगा। दोनों मां बाप, ये जन्नत की तरफ एक दरवाजा है, एक रास्ता है, लेकिन हमारे लिए क्या है आज के माशरे में, बाज लोगों के लिए क्या है? फिर मुसीबत पैदा हो गई, उसे मुसीबत बना बनाकर अपनी जिंदगी सारी मुसीबत में ही गुजार देते हैं। ये नरमी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम उल अंबिया वल मुरसलीन बच्चों के साथ खाना भी खाते हैं। हम बच्चों को खाना कैसे देते हैं? प्लेट में डाल के ऐसे, जानवर की तरह। बाज लोग प्लेट में खाना देके बच्चों को डाल देते हैं, खाते रहो, मुंह मारते रहो, जैसे दिल करे, दाएं हाथ से, बाएं हाथ से, जहां से जैसे खाना है खा लो, हमारे पास वक्त नहीं है अपने बच्चों को हम तरबियत करें, खाने के आदाब सिखाएं। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाते हैं, बच्चों को अपने पास बिठाते हैं। बच्चा है, कभी दाएं हाथ अंदर मारते, कभी बाएं हाथ अंदर मारते, कभी आगे से खाते, कभी दूर से खाते, कभी करीब से खाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या गुलाम, ए प्यारे बच्चे, सम्मिल्ला, अल्लाह ताला का नाम लो, बिस्मिल्ला पढ़ो, वह कुल भी यमीन, अपने दाएं हाथ से खाओ, वह कुल मिम्मा यलीक, और अपने करीब वाली जगह से खाओ। आदाब उत्पाम, खाने पीने के आदाब, निर्मी।

उन्होंने कहा रुक जाओ यहां पे, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारी अभी इज्जत थोड़ी सी बाकी है, इस इज्जत को जरा रहने दें और वापस मक्का की तरफ चलें। अरे अजीब सी कौम है, इतनी शदीद तकलीफ में भी फिर हम पर हमला करना चाहते हैं, सिवाय ईमान और तवक्कुल के कुछ भी नहीं है, याद रखें। हसबुनल्लाहु निअमल वकील दुनिया के इस निजाम को तब्दील कर देता है। काफिर के दिल में रुअब और खौफ तब पैदा होगा जब हमारा ईमान इतनी मजबूत होगा, हमारा तवक्कुल इतनी मजबूत होगा, जब हम मुसीबत के वक्त कहेंगे हसबुनल्लाहु निअमल वकील, तो काफिर के पांव भी लरज जाएंगे, उनके हाथ भी कांपेंगे, उनका दिल उनका साथ नहीं देगा। याद रखें, आज हम पर गालिब क्यों है? आज हमारे पास इस ये ईमान की ताकत और हक तवक्कुल मफकूद है, मौजूद नहीं है। इसी तरीके से देखें मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं बात यह कर रहा हूं कि जो अल्लाह ताला पर हक तवक्कुल पर अमल करता है, अल्लाह ताला इस जमीन का इस दुनिया का निजाम तब्दील कर देता है उसके लिए। दो मिसालें, तीसरी मिसाल मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने फिरौन से नजात दी, फिरौन ने वादा किया कि ठीक है सुबह जो है अब अपने कौम को ले जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख की तादाद में बनी इसराइल को अपने साथ लेके रवाना हो जाते हैं फिलिस्तीन की तरफ, मिस्र से बाहर निकलते। रास्ते में अभी पहुंचे नहीं, अभी मिस्र से खारिज हुए नहीं, बाहर नहीं निकले, सुबह फिरौन के सारे साथी आ गए। उन्होंने कहा कि हमारी खिदमत कौन करेगा, हमारी गुलामी कौन करेगा, तुमने इजाजत कैसे दी उनको जाने की? अब उनके सामने एक रास्ता, या तो उनको मारे या हमारी गुलामी में वापस आए। फिरौन ने अपने वादे को तोड़ा और अपने पूरे शानशों को लश्कर के साथ उनका पीछा किया। जब बनी इसराइल ने देखा कि फिरौन आ रहा है, दूर से पता चला कि अपने पूरे लश्कर के साथ आ रहा है, आज खैर नहीं है, या तो फिर वही गुलामी है या सामने मौत है। आगे समंदर है, पीछे फिरौन और उसकी फौज है, समंदर में भी मौत है और फिरौन में भी मौत है, दोनों तरफ मौत है। तो मूसा अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल ये कहते हैं इन्ना लमुद्रकून, बस अब तो हम हलाक हुए। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में लाठी मौजूद है, यही लाठी थोड़ी देर पहले सांप बनी थी अल्लाह के हुक्म से, यही लाठी जो है यानी एक पावर थी उनके हाथ में, एक ताकत थी उनके हाथ में। जब असल की ताकत करते हैं तो इस लाठी से कौन क्या ज्यादा ताकतवर चीज हो, जो मैदान ईद के दिन उसमें मैदान में जब 40 जादूगरों ने मुकाबला किया, तो अल्लाह ताला ने इस एक लाठी की वजह से, इस एक लाठी का सबब अपने प्यारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाई, कामयाब हुए। लेकिन देखें अब मौत सामने है, देखें मुसीबत की शिद्दत, इम्तिहान है अल्लाह ताला का। बनी इसराइल भी अपनी कौम भी मुखालिफ है, ए मूसा हम तो हलाक हुए यानी तुम्हारी वजह से, आगे मौत पीछे भी मौत। यहां पर ईमान और तवक्कुल सामने आता है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कल्ला, हरगिज नहीं, हम हलाक नहीं हुए, अगरचे मौत ने घेरा हो यार तरफ से, कल्ला हरगिज नहीं, तुम गलत कह रहे हो। क्यों? इन्नमा या रब्बी सयहदीन, मेरे साथ मेरा रब है, वो हमारी रहनुमाई जरूर करेगा, वो मेरी रहनुमाई करेगा इस मुसीबत में भी, इस मौत में भी। अल्लाह ताला फौरन, देखें देर नहीं होती, अभी फिरौन करीब नहीं आया, फिरौन से पहले अल्लाह ताला की कामयाबी आ गई, मदद आ गई वही के जरिए। इज़रब बिअसाक अल-बहर, इस लाठी को समंदर पर मारो। बस तवक्कुल यह है इन्नमा या रब्बी सयहदीन, हक तवक्कुल यह है, सबब शरई यह है कि इस लाठी को समंदर पर मारो। बस क्या अल्लाह ताला इस लाठी को समंदर पे मारने के बगैर समंदर को खोल नहीं सकता था?